दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माथी दलित्री थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह।

आए फेरी वरुण जी दृढ पधारी पूजा करे निरपति जे गरी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सब दाता आओस यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दात न मृदुनु छैन बलि भनेर देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए राजा खुसी भइन्वार नगर नलाए।

कशा माता कशा पिता कशा भाई कशा श्रीमती कशा छोरा कसो धन सम्पत्ति के लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून साक्षात श्रृंखली संसार सुबह में की नारी करच दिन भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई बिन्नति कर चिंता पिटर ले गुरु देवता राजा रूप भला मन सका निदान खाली हर बंकन कहिंस ज्योति समान देव के ही सौगर मन देवत चंगा करिकुन मिलन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगा।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रसाइलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

गोसक्त गायक मोहन तामाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ सुके

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुन 18 तारिख आषाढ 4 गते बिहिबार चौथी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होश पवन जाय नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समा

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल, जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ, मालस्ती माला धरौ, देवौ द्वारौ तिस्म साना ननिलौ, नागरी गोवर्धनौ, तिरिदक्ष बलिदक्ष यज्ञ।

यो सोची सब ठीक पारी मनले लाग्यो अयोध्यातिर देखे श्री अमराव की सारी पूरी आनंद बो हर हर सारा लश्कर लीप से नगर मा चलते बड़ा सोरली

0: पत्नी शीलवती रपुत्र गुमला मालिक हंसी मुख प्रेमी मित्र दाजु भाई सजिला माता पिता सन्मुख नारायण
1: हरे हरे।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका घोर से करुण रान बहारू नागमा रावण नासिका संचल भाई।

तुम करना दुर्गा धन का भटुआ कागज भये लाल नागी सरिया उसके सिखाया गुरु कौन।